ये गाना लता भाई ने भी गाई और किशोर दा ने भी गाया। मैंने जब ये गाना सुना है तो पहले किशोर दा ने कहा कि नहीं भाई ये गाना तो मेरे मुझसे होगा नहीं, मैं गाऊंगा ही नहीं, तुम लता को पहले रिकॉर्ड करो। तो लता भाई को जाके रिक्वेस्ट कर रहे शी सैंग दिस सॉन्ग। मैंने कहा कि ये शिवरंजनी राग है, हमने कहा राग की ऐसी की तैसी, मुझे ये गाना सुनाओ मैं बायट करके वैसे ही गाऊंगा। तो उन्होंने वो गाना सुना और सुन के कम से कम 7 दिन तक सुने, और जिस दिन आके गाए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीख के गाए, लग रहा

0: चलते चलते ये मुसाफिर देखो कहाँ चला गया। 1955 या 56 की बात है, महालक्ष्मी स्टूडियो में मुझसे ऑटोग्राफ लेने आया था, शर्ट और शॉर्ट्स में था। मैंने सुना था पंचम बड़ा शरारती लड़का है, इसलिए मैंने बड़े प्यार से लिखा बदमाशी छोड़ो। उसके बाद 1961 में मिला अपने पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, वही उसी स्टूडियो में। गाने की पहली लाइन सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि पंचम आगे चलकर बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा। मेरे इस ख्याल को पंचम के संगीत ने साबित कर दिया।
1: मेरा पहला गाना छोटे नवाब फिल्म का था और उसमें दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, एंड शी वाज सो सिंपल।

0: श्री आर डी बर्मन जी, हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
1: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है, पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आलाप जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट

0: गजरा।
1: आरडी बर्मन की बात कर रहा हूँ, जिसको पंचम प्यार से बोलते थे। वो एक ऐसा स्टाइल लेके आए जिसमें बोल भी है, जिसमें रिदम भी है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी है, और जिसमें एक

गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते नमस्कार सीताराम और अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड टू ऑल्सो इग्नाइट स्पार्क्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन टू यू एंड योर लव्ड वंस और ऐ बहारे बाग अरुणिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज और ऐ मुसाफिर कूचका सामान कर इस सलामे है बसीरा चंद रोज। फ्रॉम ट्रिनिदाद एंड

सस्ता समान सस्ता नहीं, हाई एंड दा समान मिले सस्ता। मैं हां थोड़ा रोहित यस मैन रिट्स फर्नीचर तो, जिथे लग चुकी है विसाखी सेल, जिस च एशली मेड इन कैनेडा फर्नीचर मैटसा ते घर नु सजान वास्ते एक्सेसरीज ते लग्जरी एरिया रक्स ते लग चुकी है 40-70% ऑफ सेल। जिवे के यस मैन हमेशा ऐलान करता है कि वी डोंट मैच द प्राइस वी बीट इट, सो थोड़े कोल कोई भी फ्लायर हैगा या कोटेड प्राइस साडे कोल रिट्स फर्नीचर ते लेके आओ, असी उस प्राइस नु मैच नहीं बीट ते करांगे, ओदे नाल नाल थोनू वर्ल्ड क्लास सर्विस भी दित्ती जाएगी। रिट्स फर्नीचर 5200 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी एंड 401-905-232 रिट्स 7489 रिट्स फर्नीचर प्लेनेट .ca। सस्ता सामान सस्ता नहीं, हाई एंड द सामान।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा हाल।

0: कौन सी? आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।